रमेश बिलोतिया की आवाज थी कि मेरे महबूब कयामत होगी। यस, इट्स अ फिल्मी गजल दैट इज बीन संग बाय किशोर कुमार, किशोर दादा एज वी नो हिम। ब्यूटीफुल गजल एंड वेरी ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड बाय रमेश बिलोतिया। शुक्रिया टू आवर प्रोफेसर दौलत रामदास ऑफ सॉल्ट रॉक, यस आवर नंबर वन प्रोफेसर, ए मैन दैट रियली लव्स हिज म्यूजिक एंड इज ऑलवेज फर्स्ट ऑन द लाइन। शुक्रन प्रोफेसर, यू नो यू लाइट अप द शो फॉर अस एज वेल, टुगेदर विद ऑल द अदर लिसनर्स एज वेल। देन दिस तराना ऑफ जोहान्सबर्ग, शी सेज यू नो व्हाट, आई बीन वेटिंग द एंटायर वीक फॉर योर शो एंड आई बीन काउंटिंग डाउन द मिनट्स। थैंक यू सो मच तराना, यस यू विल एंजॉय दिस इवनिंग शो, आई एम श्योर यू मोस्ट डेफिनेटली would, like you always do. And then there's Cass, our little niece all the way from Cape Town. Thank you so much for listening, Cass. Thank you so much for your kind message as well. And then our brother Naransami Kolapuri of Kloof, thank you very much, my brother. I know you love your ghazals as well as your qawwali. I know you listen to the qawwali music as well. Thank you so much. Aur saath hi saath hamare Rahim Sheikh Ghautang ke rehne wale hain. Shukriya bhai sahab, mohabbat hai aapki. Alhamdulillah, aap bhi hamare program ko samaat farma rahe hain. And of course, then we have our sister Asha, who's one of our regular listeners, and Pran Mahabir as well of Tugela Rail, also tuned in and enjoying the program. It's more or less time for our, you know, Suno or Seeko segment of the program. And this evening I'm going to do somebody light, you know, sentences and poetry as well. The first one is, Teri saath hi zindagi meri khubsurat hai. Teri saath hi zindagi meri khubsurat hai. Zindagi, of course, is life. Khubsurat is beautiful. Teri saath, with you. तेरी साथ ही जिंदगी मेरी खूबसूरत है। My life is beautiful only with you. And then हर सांस को तेरा नाम से जिया मैंने। हर सांस को तेरा नाम से जिया मैंने। हर सांस, every breath. Jiya, of course, is living. So the poet says, हर सांस को तेरा नाम से जिया मैंने। I have lived every single breath in your name. काश सुन सकता तुम धड़कन मेरे, काश सुन सकते तुम धड़कन मेरे, इफ ओनली यू कुड हियर माय हार्ट बीट। काश सुन सकते तुम धड़कन मेरी, धड़कन इज हार्ट बीट। काश सुन सकते तुम धड़कन मेरी, इफ ओनली यू कुड हियर माय हार्ट बीट। हर सांस को मेरी, हर सांस को तेरे नाम से जिया मैंने। आई हैव लिव्ड एवरी सिंगल ब्रेथ इन योर नेम। तेरे ही साथ जिंदगी मेरी खूबसूरत है। माई लाइफ इज ब्यूटिफुल ओनली विद यू। एंड देन लेट्स डू सम शायरी। शायरी एज यू नो इज उर्दू पोएट्री। सो यू नो, हर रात का आखिरी ख्याल और हर सुबह का पहली सोच तुम हो। हर रात का आखिरी ख्याल और सुबह की पहली सोच हो तुम। यू आर द लास्ट थॉट ऑन माई माइंड एवरी नाइट एंड द वेरी फर्स्ट थॉट एवरी मॉर्निंग। हर रात, एवरी नाइट, आखिरी मीन्स फाइनल द लास्ट, ख्याल इज थॉट, सुबह इज मॉर्निंग, पहली इज फर्स्ट। हर रात का आखिरी ख्याल और सुबह की पहली सोच हो तुम। यू आर द लास्ट थॉट ऑन माई माइंड एंड एवरी नाइट एंड द वेरी फर्स्ट थॉट एवरी मॉर्निंग। मोहब्बत होने में कुछ लम्हे लगते हैं। मोहब्बत होने में कुछ लम्हे लगते हैं। पूरी उम्र लग जाती है उसे भुलाने में। इट टेक्स ओनली अ फ्यू मोमेंट्स टू फॉल इन लव, बट अ होल लाइफ टाइम इज नॉट इनफ टू फॉरगेट दैट पर्सन। मोहब्बत होने में कुछ लम्हे लगते हैं। पूरी उम्र लग जाती है उसे भुलाने में। इट ओनली टेक्स अ फ्यू मोमेंट्स टू फॉल इन लव, बट अ होल लाइफ टाइम इज नॉट इनफ टू फॉरगेट दैट पर्सन। क्यों तेरी याद हमें सताने आए, क्यों तेरी याद हमें सताने आए, क्यों हक चाहत का जताने आए। क्यों तेरी याद हमें सताने आए और क्यों हक चाहत का जताने आए। Why did the memory of you come back to torment me and why did you try to claim the right of love again? क्यों तेरी याद हमें सताने आए, क्यों हक
चाहत का जतानी आई. Why did the memory of you come back to torment me? And why did you try to claim the light of love again? मोहब्बत होने में कुछ लम्हे लगते हैं, पूरी उम्र लग जाती है उसे भुलाने में. It only takes a few moments to fall in love, but a whole lifetime is not enough to forget that person. हर रात का आखिरी ख्याल और सुबह की पहली सोच हो तुम. हर रात का आखिरी ख्याल और सुबह की पहली सोच हो तुम. You are the last thought on my mind every night and the very thought every morning. I think that should suffice for today. Shukriya for listening in.

0: जी हाँ, ब्यूटीफुल हज़ल, नो डाउट। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, ब्यूटीफुल। एंड यस, तरह ना, यू हैव हिट द जैकपॉट, नो डाउट। शी सेज शी इज बीन हमिंग दिस सॉन्ग द एंटायर डे थ्रू, एंड देयर यू आर, इज बीन प्लेड दिस इवनिंग। एंड आई न्यू जाकिरा आयला बहन एंड अनिल रामस्वरूप विल रिस्पॉन्ड एज वेल। यस, जाकिरा आयला बहन, अनिल रामस्वरूप, नो डाउट। इट्स अ ब्यूटिफुल गजल एंड इट्स अ क्लासिक एंड ब्यूटिफुली संग बाई दिस न्यू आर्टिस्ट ऑफ आवर्स। एंड थैंक यू सो मच दे रिकी नाइट आउल, केटी फ्रॉम पीटर मैरिट्सबर्ग, शाहिद मिया, ऑल्सो विजी, विजी, थैंक यू सो मच विजी, इकराम खान, शुक्रन भाईजान, ये मोहब्बत है आप लोग की। एंड ऑफकोर्स लिसनिंग टू अस अगेन इज अनदर वन ऑफ आवर वेरी रेगुलर्स, एंड दिस इज वसंती इंद्रानी कनेगिन। आई सी द लोटस एफ एम फैमिली एंड द गुलदस्ता फैमिली इज ग्रोइंग ऑल द टाइम।
1: Feel the suspense when you unravel the riddle and embark on amazing adventures with Hollywood Bets and Spinners Onk Mystery Parcel. You could win your share of 1 million rand in cash and bonus bets when you unlock the prize in the parcel. Bet 2 rand or more on selected Playtech slots every Sunday and Wednesday between 8 a.m. and 11:59 p.m. Available now. T's and C's apply. Hollywood Sportsbook is a licensed betting operator. No persons under the age of 18 years are permitted to gamble. Winners know when to stop. South African Responsible Gambling Foundation toll-free counseling line 0800 006 008 or WhatsApp help to 076 675 0710.
0: आइए अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग एन आर्टिस्ट दैट रिवाइटलाइज द आर्ट ऑफ गजल सिंगिंग, एंड मेरा इशारा है मरहूम जगजीत सिंह साहब की तरफ, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल गजल एंड आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू विल लव इट।
2: यू आर लिसनिंग टू गुलदस्ता ऑन लोटस एफएम।

तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो? यू आर स्माइलिंग सो मच, व्हाट सोरोज हैव यू गॉट दैट यू आर हाइडिंग? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम हो जिसे छुपा रहे हो? और आंखों में नमी हंसी लबों पर, दिस टीयर्स इन योर आईज बट दिस स्माइल ऑन योर लिप्स। आंखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रहे है? आई कैन सी द एक्सप्रेशन इज समथिंग एल्स बट यू शोइंग समथिंग एल्स। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम हो जिसे छुपा रहे हो? हु एल्स बट द ग्रेट ग्रेट ऑफ कोर्स जगजीत सिंह साबर। ये मोहब्बत है कितनी लोगों की, एंड सो मेनी ऑफ यू। मोहम्मद असद साहब ऑफ रिजर्वे हिल्स, थैंक यू सो मच माई ब्रदर। एंड फातिमा, यस फातिमा ऑफ पोर्ट एलिजाबेथ बैक विद अस, थैंक यू सो मच फातिमा, ट्रस्ट यू कीपिंग वेल। एंड ऑफ कोर्स फातिमा इज अ ग्रेट गुलाम अली फैन। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे बाबू गोरा साहब। जी बाबू गोरा साहब, ये भी आपकी भी मोहब्बत है यार, मुझे यकीन है कि आप बड़े बेहतरीन शायरी लिखते हैं। शुक्रिया, ये मोहब्बत है। एंड वी वॉज सेल्वी फ्रॉम केप टाउन, थैंक यू सेल्वी। मुस्कान ऑफ पाइन टाउन, यस मुस्कान साहब एज वेल। डिकी मैग Raj and his entire family down in Cliffdale also enjoying the music. So, Lijia program ko aage bada. And we're going to be listening to Osman Mir, another very well-known ghazal artist.

0: कटेगी ये जिंदगी रोते रोते, ये कहकर गई खुशी रोते रोते. यस दिस लाइफ विल गो ऑन विद अस ऑलवेज क्राइंग. कटेगी ये जिंदगी रोते रोते, ये कहकर गई खुशी रोते. बट द आयरनी ऑफ इट ऑल, हैप्पीनेस इज टेलिंग अस दैट यू विल बी यू नो क्राइंग ऑल योर लाइफ. कटेगी ये जिंदगी रोते रोते, ये कहकर गई खुशी रोते रोते. वाह, दैट वॉज अनूप जलोचा सिंगिंग दैट ब्यूटिफुल गजल. एंड थैंक यू सो मच. यस शुक्रिया, मेहरबानी टू रोएदा ऑफ केप टाउन. यस माई सिस्टर, आई नो इट्स लेट टाइम फॉर मगरिब एंड यू गोना मिस आउट, बट थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, ऑलवेज ट्यूनिंग इन. Rubeda is really enjoying the ghazals this evening as well. And saath hi saath hamare Nirmala Devi. Yes, Nirmala Devi, ex-Devonite, but of course these days settled in Johannesburg. And then every one of you, especially the Cape Townians, are looking for Tragedy King and Shahid Mia as well. Tragedy King will be back with you guys next week, and that is Ataullah Khan Saab.
1: You are listening to Goldasta.
0: जी हाँ, आप ई बी महमूद के साथ है. और जहाँ तक मेरा सवाल है, आई विल बी विद यू एज लॉन्ग एज आई कैन. जब तक जिंदगी में यू नो उसने साथ दिया, वी विल बी टुगेदर इंशाल्लाह. लेट्स लिसन टू मुन्नी बेगम.

pasand aaye. Yes, of course, this team is really making waves in the music industry, and you're absolutely right, Shakira, undoubtedly very pleasant artist, very nice to, very, you know, they're always pleasant to your ears. You want to listen to them, and thank you guys so much for tuning in. वक्त बड़ी तेजी से जा रही है, अब अलविदा कहने का वक्त भी आ चुका है. रही जिंदगी तो फिर बातें होंगी, ना रही जिंदगी तो बस यादें होंगी. वैसे तो जिंदगी को संभाल के रखना, जिंदगी मौत की अमानत है. डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन इमीडिएटली आफ्टर द न्यूज बुलेटिन टू टॉक एट 7 विद कसंगी राधे. कसंगी राधे विल बी प्रेजेंटिंग टॉक एट 7, एंड आई एम श्योर शी हैज गॉट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. जहां तक मेरा सवाल है, जिंदगी ने अगर हमसे वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. फिया मानिल्ला, खुदा हाफिज़.